0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम। गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

0: साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते
1: 1 2 3 4 ला ला ला
0: Musicians, आप लोग मत बजाइए. Ready? 1, 2, 3.